0: क्या बात है, बड़ा शानदार गीत ते सुन के तुसी भी आनंद ले रहे हो। रेडियो उड़ान
1: फैशन आईक्यू प्रोग्राम दे सिसे नु स्पोंसर कर रहे ने फैशन आईक्यू प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड फैशन आईक्यू। फैशन आईक्यू ते तुसी हैवी ब्लैंकेट, रजाई वाले ब्लैंकेट, बाय वन सेकंड 25% ऑफ, फाइव बेड शीट ओनली $50 ते मेंस सेक्शन दे विच मेन सूट दे उपर तुसी बाय वन सेकंड 25% ऑफ, लेडी सेक्शन दे विच लेडी सूट 25 तो लेके 50% फ्लैट ऑफ दे उपर तुसी ले सकदे हो लेडी सेक्शन दे विच कुछ भी। और नाल दी नाल 4 पीस दा लगेज सेट, जे तुसी इंडिया जा रहे हो घूमन जा रहे हो तो 4 पीस दा लगेज सेट ओनली $175 दे विच। तुसी थीम वेडिंग करवाउणी है तां बेस्ट टेलर टीम इन्हां कोले इन हाउस अवेलेबल है। रेडियो उड़ान दा रेफरेंस देण ते तुहानू खूबसूरत गिफ्ट मिलूगा फैशन आईक्यू तों। तुसी पहुंचो फैशन आईक्यू दी किसी भी नेड़े वाली लोकेशन तों, गूगल कर सकदे हो फैशन आईक्यू 905-453-2225 905-453-2225 फैशन आईक्यू।

0: बहुत बाकमाल सिंगर हुसैन जी, ऐसा सिंगर सी कि ना
1: जी जी
0: थोड़ी जी देर मार्केट दे विच आया ते थोड़ी जी देर दे विच इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी, बड़ी प्रसिद्धि जिहड़ी है। पहला गाना ही इहदा पॉपुलर करन वाला इहनू इही सी कि यारन मुल्ले, बहुत वधिया गाना
1: क्या
0: इसने
1: बात
0: गाया
1: क्या
0: सी
1: बात है।
0: ते बहुत खूबसूरत सिंगर सी। बाद दे विच फिल्मां, इह साडे एक रिवाज आ थोड़ा जिहा, पंजाबी जिहड़े गायक है ना उह सारे फिल्मां दे विच जरूर हथ जमाया उहनां ने भी। इहने भी बेचारे ने हथ जमाया सी पर कामयाबी नहीं मिली। देखो जो जो चीजां लिखियां होंदियां ना परमात्मा वालों मुकद्दर दे विच, उधर कामयाबी तुहानूं मिलनी। गायकी च इहनूं मिली सी बहुत ज्यादा, इहने फिल्मां च भी कोशिश कीती, फिल्मां च इसनूं कामयाबी जड़ी मिली नहीं सी। दोस्तों 647-367-5553 साडे स्टूडियो दा नंबर है ते फिलहाल इक छोटा जिहा मैसेज तुहाडे नाल मैं शेयर करदा। खलील जी आ गए ने, खलील जी दी गल सुन लईए। खलील जी, हां जी हुक्म सर।
1: जी मैं कह रहा था कि आप जो बास का और ये सपने की जो बात करें, उस पे मुझे बड़ा उम्दा कलाम याद आया अल्लामा इकबाल का,
0: जी जी
1: कि खयाबानों से है परेज लाजिम,
0: जा
1: अदाएं हैं उनकी दिल बराना,
0: क्या बात।
1: हम आम कबूतर का भूखा नहीं, मैं जिंदगी बास की जाहिदाना, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गरम करने का है ये बहाना,
0: बिल्कुल
1: ये पूर्व पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नील को आसमा बेखराना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं के शाहीन बनाता नहीं आशियाना।
0: बिल्कुल सही बात है जी, यार बिल्कुल सही बात है। भी जो कबूतर को ना बाज ने पकड़ लेना है, उसको
1: जी
0: फेंकना जमीन पे, फिर नीचे से उठा के फिर ऊपर आसमान पे ले जाना, फिर फेंक देना, फिर ऊपर ले जाना, वो अपने
1: बिल्कुल
0: ब्लड
1: बिल्कुल
0: गर्म रखने वास्ते ना
1: बिल्कुल। और 10,000 फीट ऊपर जाता है, 10,000 फीट की रफ्तार ऊपर रहता ग्राउंड से, ये खुसूसियत है उसकी, ऐसी नहीं है। और फिर ये देखिए, कभी चीज मुर्दार नहीं खाता उन्हें,
0: अपना
1: आप उसके
0: शिकार खुद
1: सामने
0: मार के
1: खुद करता, आप उसके सामने कितनी अच्छी चीज डालो मुंह फेर लेता, बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, तुझे क्या चाहिए, मैं अपने हाथ से खुद करूंगा, यानी खुददारी बता रहा हूँ आपको मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: थैंक यू सो मच सर फॉर टाइम। थैंक यू
0: सो। दोस्तों जुड़े हो तुसी।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड, टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
2: लै, आपां हुणे करदे आं संधू साहब नाल गल ते करदे आं मसले दा हल।
1: एसी, फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नूं कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
3: 647-706-6640।
4: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करो।

0: 01 और HSP कंस्ट्रक्शन अपने घर के ही एक रेंटल इनकम प्रॉपर्टी होर बना लो, अपने खड़े घर एक रेंटल इनकम प्रॉपर्टी होर जिहड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी टैक्स बिल बत्तियां पे करके थोनू $500 होर छड़े। थर्ड यूनिट बनाउणा घर दे विच HSP कंस्ट्रक्शन वाले काम करते हैं, बने बनाए घर नू भी 3 यूनिट च बदल देंदे ने, पूरे बने हुए घर नू 3 स्टोरी नू 3 यूनिट च बदल देंदे ने। रेंटल प्रॉपर्टीज च काम कराओ 416-671-0709 416-671-0709। ट्रू नॉर्थ ग्रैवल वाले बंदे जिन्हें भी ने ग्रैवल पाउणी है, जिन्होंने अपने यार्डां दे विच डंप ट्रक मशीनरी पूरी है इन्हां कोल, एक्सवेशन मशीनस ने, ट्रू नॉर्थ ग्रैवल पाओ, पक्का कर लो अपना जिहड़ा भी ड्राइववे है जां अपना बैकयार्ड है जां कोई भी थोड़ी पार्किंग लॉट है। 416-803-0623 416-803-0600 मैनू कॉल करनी है किसी ने भी शो तो बाद 416-518-3200 बिजनेस प्रमोट करो अपना। समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री सन ज्वाइन करन जा रहा है, होर भी 2-3 कॉल्स आए हुए हैं, तो अपने बिजनेस नूं प्रमोट करो, तो नाल किसी कोई करजा वो बारे जानकारी लेनी है 416-518-3200 से सही तो सच्ची सलाह लैन लई 416-518-3200।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

इसमें गीत में चंद लाइनें ऐसी हैं जिनसे महसूस होता है कि चमनलाल चमन अपने वतन को कितना मिस कर रहे हैं, कितना महसूस कर रहे हैं।

0: गया खुल गया खुल गया सच्चा सौदा गुरु नानक मोदी खाना कपड़िया का शहर नकोदर विच बस स्टैंड नेड़े सिविल हस्पताल वाले रस्ते विच खुले कपड़े रेडीमेड सूट कोट पेंट सोहनिया दस्तारा कुर्ते पजामे व्याह शादिया वास्ते दाज ते वरी बनाउन वास्ते याद रखो गुरु नानक मोदी खाना नकोदर दे विच एक मोल दी दुकान जदो भी इंडिया जा रहे हो नकोदर शहर दे विच गुरु नानक मोदी खाना कपड़िया दे स्टोर ते जाओ अते पैसे बचाओ होर जानकारी वास्ते 9012791127 ते कॉल भी की जा सकती है 90127 ते कॉल भी कर सकते हो।
1: अज दे समय विच हर मापे दी एहो इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई विच भी अगे होवे ते अपनियां जड़ां अपने संस्कारां ते अपनी पछाण नाल भी जुड़िया रहे। इस सुपने नूं साकार कर रहा है गोबिंद सरवर स्कूल। साडा मनना है कि असल सिक्ख्या ओह है जो बच्चे दे दिमाग नूं ज्ञान दिल नूं संस्कार अते जीवन नूं मकसद देवे। बेहद खूबसूरत जिंदगियां बनाउण लई वचनबद्ध है गोबिंद सरवर स्कूल। गोबिंद सरवर ब्रैम्पटन की नवी लोकेशन आ रही है कॉर्नर ऑफ एयरपोर्ट रोड एट क्वीन स्ट्रीट। जेके तो ग्रेड 10 तक रजिस्ट्रेशन करने लई संपर्क करो 9054586222।
2: हाय दिस इज हरप्रीत सिंह फ्रॉम टॉप चॉइस।

health insurance specialist from Top Choice Insurance Agency. जब HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. HK Movers, होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 इयर्स एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल. HK Movers, गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704.

0: 1-800-GO-FULL.
1: Hassle-free moving KLA. HK Move On. इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए JTA में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन। 9054586808।

0: Brampton या फिर तीसरी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: ए टू जी किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देखे गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते ए टू जी किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
2: ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ
3: ਕਾਲ ਕਰੋ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
4: यू आर लिसनिंग टू पंजाबी वर्सा मंडे टू फ्राइडे 11 AM टू 12 PM फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 647-448-1000 टोरंटो'स नंबर 1 स्टेशन AM 530 पंजाबी वर्सा

है भाई जान आपने, तो सितंबर 18 फ्राइडे नाइट 7 बजे लिविंग आर्ट सेंटर पे पहुंचना है, क्योंकि टिकटें टिकट मास्टर.ca पे अवेलेबिलिटी है। टिकट मास्टर.ca पे पहुंचो, टिकटें

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगी
1: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
2: 98 गलत काउंटिंग सिखाई जाने
3: हो काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
4: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा वादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिये। अगे चल के सुखी निजर साहब वतनो दूर तुहाडे लई पेश करनगे और मनप्रीत जी हिंदुस्तान तो खबरां भी पेश करनगे। 2 बजे तक साडे स्टूडियो दे नंबर रहणगे 905-799-0999 शाम नूं मामा आएगा ते 4:42 ते सवेरे चले जाणा। अज सारा दिन बदलवाई झखड़ झोले बारिश पएगी थंडरस्टॉर्म आउणगे तापमान 25 डिग्री। कल नूं सारा दिन बदलवाई दे नाल हल्की हल्की बारिश तापमान 24 डिग्री। थर्सडे नूं मिक्स एंड क्लाउड तापमान 27 डिग्री। फ्राइडे 28 डिग्री सूरज चमकदा रहेगा। सैटरडे 27 डिग्री मिक्स सन एंड क्लाउड। संडे नूं बारिश पैण दे फुल आसार नजर आउंदे ने। तापमान 28 डिग्री रहणगे। अज टोरंटो दे जीटीए विच भारी मींह दा अलर्ट है। 75 तों 100 मिलीमीटर जिहड़ा बारिश आ उह पै सकदी है। नाइजीरिया तो खबर आ रही है टारगेट कम्यूनिटी नूं इक नूं कीता गया जिथे दर्जन दे करीब लोकां दा कतल कर दिता गया। उधर यूनाइटेड नेशन आलां ने आर्डर कीता इजराइल नूं कि जिहड़ी आकूपेशन है उस नूं खत्म कीता जाए। जिहड़ी रेक्सडेल मर्डर होया सी अपनी एक लड़की दा कतल कर दिता गया सी जिहदा नाम नवनीत कौर 26 साल है। उस सिलसिले च 37 साल शरणजीत नूं फड़िया है। पुलिस ने यह दस्या कि इहदे फर्स्ट डिग्री मर्डर दे चार्जस लगे ने और इह ते पहलां भी इंटीमेट पार्टनर असॉल्ट दे चार्जस लगे ने। सो आपस च इक दूजे नूं जाणदे सी, ऐसी गल नहीं है ते उहदा पिछा पुछा भी करदा रहा इह बंदा। टिक्का जंक्शन लई 6474294040 केटरिंग करवानी है छोटी वड्डे फंक्शन लई नो प्रॉब्लम 6474294040 लाइव कुकिंग करवानी है करे नो प्रॉब्लम 6474294040 तुसी इन्हां दे बैंकुट हॉल या लॉन्ज विच छोटी वड्डी पार्टी करनी है नो प्रॉब्लम 6474294040 647-429-4040। मॉर्गेज सॉल्यूशन दे गुरप्रीत समरा जी, तुहाडे मकान दी रिन्यूअल आ रही है, तुसीं अपनी मॉर्गेज बी सी लैंडर तो हटा के ए लैंडर नाल करवानी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है। कॉल 905-460-9099। प्री अप्रूवल भी करवा के दिंदे हन तां कि कॉन्फिडेंस नाल मकान लै सकदे हो। 80-90 हज़ार बेस नूं बनाउण लई चाहीदे ने। मकान लैण वेले इस दा भी अरेंजमेंट कीता जांदा है। गुरप्रीत समरा नाल बैठ के डिस्कस करो। 2155 B स्टील्स एवन्यू नियर टॉप रूम यूनिट 32 905-460-9099 905-460-9099 इन्हां दा नंबर है। सज्जणा, रब कोलों मंगणा छड्डो, मेहनत करो, रब आपे देवेगा। जिस दिन रब मंगण ते आ गया ना, आखरी साह भी लै जावेगा।
1: पूरे 40 साल हो गए अपने व्याह नूं, फिर किथे सेलिब्रेट करन दा इरादा है?
2: मेरी मन्नो, आपा पिंड ना चलिए।
1: धर्म नाल आ तां तू मेरे मन दी गल ही कहती है, पर इन्नी छेती टिकटां कित्थों मिलणगियां?
2: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल तो अपने साथ वर्गे ही साथ है उन्हां दा, अपने क्लाइंट्स दे नाल पिछले 40 सालां तो।
1: 40 सालां तो बेदाग सर्विस गिल इंटरनेशनल ट्रैवल।
2: क्वालिटी सर्विस, वधिया रेट्स ते बेस्ट डीलिंग है उन्हां दी पछाण। इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया दे किसी भी कोने च करना होए ट्रैवल,
3: सर्विंग कैनेडा नेशन वाइड
2: 9056718400 or 9057968800 or visit giltravels.ca.

0: करता है चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट
1: फोर एंड अवनीजर इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाई प्लाजा के सिल्वर हट
0: 6473393521
1: 6473395 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले
3: लेनियां होन या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो एयर टिकट्स इंश्योरेंस पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा कॉल 9056781200
4: ना किद्दर दी तैयारी
2: ओ जी मैं रसोई नो निगा मारी देखिया ग्रोसरी मुक गई सारी ते फिर मैं बेस्ट एशियन ग्रोसर दी खिंच लई तैयारी
4: मेनू पता है आज ग्रोसरी दे नाल नाल आओ बारो खान पीन दी वारी क्योंकि इना कुल मिलदी है वैरायटी सारी
3: जी हां बेस्ट एशियन ग्रोसरी स्टोर जिथे ग्रोसरी ते रेस्टोरेंट दोनों ने जिथे तुहानू मिलेगा फिश गोट करी तंदूरी नान ते स्पेशल देसी स्टाइल पिज्जा फन सर्विस भी प्रोवाइड कर देने बेस्ट स्टेशन ग्रोसर इको प्लाजा विच तिन्नो ग्रोसरी देसी स्टाइल पिज़्ज़ा एंड रेस्टोरेंट कैम्ब्रिज कॉल 519-621-7774
5: सही सुनिया बई जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है जलेबियां पकौड़े समोसे टिक्कियां व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां स्वीट महल दी वेज नॉनवेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड जॉबिको स्वीट महल ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट
6: रूबरू होंगे प्रोग्राम साथ देंगे बिलकुल जगजीत माल साहब माल साहब सत श्री अकाल
7: जी मेरे वालों सारे श्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल उम्मीद करते हैं तुम अपने अपने कामां कारां दे विच व्यस्त होवोगे बिजी होवोगे असीं तुहाडे इस खूबसूरत एक घंटे नूं बड़ा ही खूबसूरत बनाने की कोशिश करांगे ते पंजाब दी धरती तो सुवर्ण सिंह टहना पंजाब दी खबरां लैके पेश होणगे गीत संगीत होवेगा म्यूजिक होवेगा ते होर स्पॉन्सर बारे जानकारी दित्ती जाएगी
6: अज बिल्कुल साडा लाइव ऑन लोकेशन चलेगा यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो यूनी ग्लोबल एडवाइजरी दा सुनेहा तुहाडे नाल साझा करांगे क्योंकि भाई जी अज दा दिन हैगा सो जेकर तुसीं अपने आप नूं एनरोल करवाउणा चाहुंदे हो तां यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तों नागपाल साहब दे नाल साडी गल्लबात होवेगी क्योंकि अज दा लाइव ऑन लोकेशन नागपाल साहब करनगे सो यूनी ग्लोबल एडवाइजरी जेकर तुसीं ग्रांट एंड लोन लैण दे हकदार हो ते तुसीं ग्रांट लैणी चाहुंदे हो बस तुसीं ग्रांट कितें भी अपनी मर्जी मुताबिक सकदे हो वापस करन दी तुहानूं जरूरत कोई नहीं पैणी उहदे बाबत गल्लबात करांगे क्योंकि मंगिया दा बंदा डालर दा रह नहीं दिंदा इत्थे 15-20-50 हज़ार डालर की गलबात होनी है सो तुसीं जरूर संपर्क कर लियो नागपाल साहब की टीम दे नाल क्योंकि यह लंबे अरसे तो यह सेवावां ने जिहड़ियां प्रदान करदे आ रहे हैं सो उहनां दे बाबत गलबात करांगे 437-264-3175 437-264-3175 ते तुसीं गलबात कर सकदे हो नागपाल साहब दे नाल ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਬੈਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦਿਓਲੋਣੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦਿਓਲੋਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ 647-564-2723 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 647-564-2733 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਸਕਾਨ ਦਿਓਲੋਣਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ

0: ਜੀ ਬੱਪਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ।
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਪ ਪੈਸੇ ਭਾਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦੂੰ ਢੇਰੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੂੰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟੂੰ ਟੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ 437-264-3175। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਗਾ ਦੂੰ ਢੇਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੂੰ। ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ?
0: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
1: ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਕਿਤੇ ਨੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ
0: ਜੀ?
1: ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
0: ਜੀ। ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ।
1: ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ ਹੁਣ,
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਦੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੇਸ਼ ਕਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਾ ਥਾ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਉਸਮੇ ਸੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋ ਦੇ ਦਿਆ। ਆਪ ਪੇ ਸਿਰਫ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲ ਕਾ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਪੇ, ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕਈ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਆਪਕੀ 2024 ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 70,000 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਪੀਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਪਕੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਕਮ ਹੀ ਬਤਾਤੇ ਹੈ। 30 ਸੇ ਲੈ ਕੇ 100,000 ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, ਜਿਸਕਾ ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਜੈਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਕੀ ਮੰਗ ਚੱਲੇ 4 ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 4 ਹੈ, 80,000 ਆਇਆ, 40,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 0% ਪੇ ਲੋਨ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਸਟ 40,000 ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। ਕਬ ਤੱਕ? 2 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਬੰਦ, ਗ੍ਰੋਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਲੋਨ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਆਏਗਾ, ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੇ।
1: ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਔਖਾ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਰਸ ਔਖੇ ਆ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਆ?
2: ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੁੱਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਘਰ ਕੇ ਕੰਫਰਟ ਸੇ 2 ਸੇ 3 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਨੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਪੇ ਲਗਾਏ ਚਾਹੇ ਲੈਪਟਾਪ ਪੇ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਆਪਕੇ ਖਾਤੇ ਮੇ ਆਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਕੀ ਫੀਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਲਜ ਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਔਨ ਅਦਰ ਐਂਡ ਆਪਕੋ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸਕਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੈ। ਆਪ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਤੇ, ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਮ ਕਹਤੇ ਹਮਾਰੇ ਹੈਂਡਸ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅਗਰ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤੋ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਹਮ ਤੋ ਹਮਦੇ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਕੋਈ ਔਰ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰਾ ਲੋ। ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 8 ਕੋਰਸ ਹੈ ਰੈਪੂਟਡ, ਉਸਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਆਤੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਵਹੀ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਜਿਸਮੇ ਆਪਕਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਵੋ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਜਿਸਮੇ ਹਮਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
0: ਜੀ
1: ਅੱਛਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਓਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੁਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 50,000 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂ ਜਾਂ 7,000 ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੁਟੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ?
2: ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਕਾ NOA ਦੇਖਤੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਇਨਕਮ ਕਮ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਮੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਕੇ ਖਾਤੇ ਮੇ। ਓਕੇ, ਅਭੀ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫਰੀ ਲੋਨ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰੀ ਲੋਨ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰੀ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਆਪਕੇ ਜੋ ਆਪ ਕਾਗਜ਼ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਗਰੰਟਰ ਯੇ ਵੋ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਉਸਮੇ, ਯੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਇਸਮੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ ਆਪਕੋ ਫੰਡਿੰਗ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਬੈਂਕ ਤੋ ਐਸੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਬ ਇੰਟਰਸਟਡ ਉੱਪਰ ਥਾ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਉੜਤੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਨਾ, ਜਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਪਰ ਉੜ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੇ ਵੀ ਉੜਤਾ ਤੀਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਥਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਥਾ 4,300 ਡਾਲਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਥਾ ਉਸਮੇ ਸੇ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਮੇਜਰ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਹੈ, ਫਰਸਟਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਔਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਜ ਉਸਕਾ 2.5% ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਕ 7-8% ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥਾ ਬੀਚ ਮੇ, ਰਾਈਟ? ਅਬ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮ ਹੈ, ਬਟ ਤਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, ਸਕਿੱਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ।
1: ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਜੀ।
0: ਲੋਨ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ?
2: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸਮੇ ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਚਲੇ, ਅਬ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 2 ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਪਲ ਹੈ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 2 ਕੋ ਫੰਡਿੰਗ ਆਤੀ 45,000 ਕੀ, ਉਸਮੇ ਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਤਨੀ ਹੈ 25,000 ਡਾਲਰ, ਜੋ ਰੈਸਟ 20,000 ਡਾਲਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਹੈ, 0% है एक साल तक, उसके बाद डेढ़ साल बाद आप पे करना स्टार्ट करते हैं, तब ब्याज दर 2.5% साल का है, पूरे साल का, 15 साल में लौटा सकते हैं। मजे की बात, आपकी किस्त बनेगी $200, उसमें से ब्याज कितना है, उसमें से ब्याज है $25 पूरे, मतलब 10 साल में पे कर रहे हैं आप, $200 की किस्त में $25 ही ब्याज है, बाकी सारा कहाँ जा रहा है, प्रिंसिपल में विदाउट क्रेडिट चेक, नो कोलैटरल, नो गारंटर, लोन मिल जाता है आपको, और बाकी आप 15 साल में उसे लौटा सकते हैं 2.5% साल का ब्याज, जो कि कुछ भी नहीं होता।
1: सो तुसीं एक बार नंबर जरूर साझा करो ताकि जिहड़े साडे लिसनर रह गए हजे एनरोलमेंट नहीं हुई, दो दिन हजे हैगे आ, ग्रांट भी ले सकदे आ ते लोन भी उहनां नूं मिल सकदा वा, ते बिना कोई गरंटर दे, बिना किसी गलबात दे, बिना कोई घर तुहाडे कोई कार नहीं है, घर नहीं है, तुसीं पीआर हो, तुसीं कुछ भी हो, तां तुसीं इह लोन ते ग्रांट लैण दे हकदार हो सकदे हो। ईवन जे तुसीं पेंशन भी लैंदे हो तां वी, ते इह तुहाडे जिहड़ा हैगा जी इह इनकम दे विच तां नहीं काउंट हुंदा ना इह।
2: ग्रांट इज टैक्स फ्री, नंबर वन, नंबर टू, लोन तो वैसे ही लोन ही है, इनकम नहीं है, तो इसलिए आप पीछे ना रहे, फंडिंग हासिल करें। सेल्फ एम्प्लॉयड, ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयड लोगों को ज्यादा ज्यादा ज्यादा फायदा है, जिनकी इनकम नोटिस ऑफ असेसमेंट पे कम है, कम $70,000 से फैमिली इनकम, सिर्फ वही हमें कॉल करें, क्योंकि साफ काम है, कोई हेरा फेरी, कोई कागज नहीं हलते इस काम में, गवर्नमेंट को कागज सबमिट हो रहे हैं, बैंक को नहीं हो रहे, तो इसलिए इनकम कम है नोटिस ऑफ असेसमेंट पे। सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल बिजनेस ओनर, ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कॉल करें, फंडिंग हासिल करें, हासिल करें, ग्रांट्स हासिल करें, दो दिन रह गए हैं हमारी फीस काम होने के बाद, $199 या $499 फ्लैट वन टाइम फीस है, काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से देनी है।
1: काम कितने टाइम जो नागपाल सर, जे ग्रांट कितने टाइम जाजू?
2: 30 से 90 डेज में, डायरेक्ट क्लाइंट के खाते में टू करके,
1: यानी 3 महीने के बीच ई ग्रांट। जे चार जने फैमिली मेंबर, हस्बैंड वाइफ ते दो बच्चे है, किन्नी ग्रांट, कल्ली ग्रांट किन्नी ग्रांट उन्हें मिल सकती है?
2: 40,000।
1: किन्नी?
2: 40,000।
1: 40,000 ग्रांट जी वापस नहीं करनी, बंदा कितने भी बरतल पे?
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, 40,000 to 45,000 होगा। और बाकी अगर बच्चे आपके, ऐसा नहीं कि आज ही पैदा हुए हैं, अगर आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, देर काउंटेड एज डिपेंडेंट्स।
1: अच्छा, जे जे जे पांच जना की फैमिली है, फिर उन्होंने कितनी मिलेगी ग्रांट?
2: उनकी ग्रांट हो जाती $50,000, एडिशनल ऑप्शनल $50,000 का लोन भी होता है, जो कि 0% पे है, तो इसलिए जितना ज्यादा फैमिली साइज, जितनी कम इनकम नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, ज्यादा ज्यादा ज्यादा फायदा, मुझे नहीं आपको, फंडिंग आपको आ रही है सर, हमारी फीस तो फ्लैट है, हमें तो जिसको कम मिल रही है वो भी उतने देता है, जिसको ज्यादा मिल रही है वो भी उतने देता है, आपका फायदा है इसमें।
1: बंदा जिहड़ा दूर दरेडे बैठा वो भी उत्थों बैठा, कित्थे तक इह जिहड़े हैगा इह अपना कोल, इह अलग अलग प्रोविंसेस दे अलग अलग होंगे, इह सिर्फ अपनी प्रोविंस लई है जी? इह
2: सिर्फ ओंटारियो में ही है, आप चाहे आज लैंड कर रहे हैं ओंटारियो में, चाहे न्यू इमिग्रेंट है, पीआर सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, रिफ्यूजी का केस आपका अप्रूव हो गया है ओंटारियो में, कहीं भी रहते हैं हमारे क्लाइंट्स नायगरा से कर रहे हैं, क्यों? फुली ऑनलाइन कोर्सेज ने सर, कहीं भी बैठे ओंटारियो में आप क्लासेस लगाएं, स्किल हासिल करें, फंडिंग अपने अकाउंट में 30,000 to 100,000 हासिल करें, जिसका मेजर पोर्शन तो ग्रांट्स है, ग्रांट्स बंद हो रही है ग्रांट्स।
1: नागपाल सर, जे बंदे नूं विचे किते इंडिया जाना पैंदा जां किते होर जाना पैंदा जां किते वेकेशन ते, ओदी अटेंडेंस आ जिहड़ी, ओह किन्ने परसेंट अटेंडेंस आ जिहड़ी, ओह कहिंदे आ कि इन्ने परसेंट तां भाई जी क्लासां तुहाडियां तुसीं लाओ ही, ऑनलाइन तुसीं क्लासां ने जिहड़ियां लाउणियां ने, किन्ने परसेंट अटेंडेंस आ जिहड़ी ओह जरूरी हुंदी है?
2: 75%।
1: हांजी, 75% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਸ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ 75% ਆਪਕੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਨੇ, ਸਕਿੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰੇ
1: ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
2: ਦੇਖੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਤਿਗੜਮ ਲਗਾਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਠੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਇਕਦਮ ਬਕਵਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ, और वहां पे जो दोस्त ही आ रहे वाले, जैसे मैंने बताया ना आपको, मेरे पास कल क्लाइंट आए, उनका दोस्त उनसे 25% ग्रांट का मांग रहा था, जो बंदे को खुद को ऑफिस ही नहीं है, जो बंदे ऐसी बस टाइम पास कर रहे हैं, वो तो लोगों को स्क्रू ही करेंगे ना, और जब लोग स्क्रू होते हैं वो कहते हैं सारे चोर हैं, हम अच्छे हैं, मतलब समझ रहे हो, कुछ लोगों की वजह से सबकी बदनामी होती है, तो इसलिए हम तो ठा करके कहते हैं सर टचवुड कोई फेल नहीं हुआ आज तक, 8 साल से आपकी सेवा में है, 1,000 square feet का ऑफिस है, 8 employees हैं, इतनों को असिस्ट कर चुके हैं, एक टचवुड कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि हम ईमानदारी से सारा काम कर रहे हैं, हम एक दिन में कम से कम 10 कॉल आती तो 7 बंदों को हाथ जोड़ देते हैं, काम आपका नहीं होगा, क्योंकि इनकम ज्यादा होती है उनकी, तो देयर इज नो कुंडी नो कैच, क्लासेस आपने लगानी है साल भर, आसान सी फुली ऑनलाइन पढ़नी।
1: एक कोर्स ये भी दस्सदे सीगे कि ओह सिर्फ तुसी ओदे च कोई टीचर बैठे जी हुंदा जी, ओह आप सेल्फ स्टडी वाला कोर्स कहड़ा सीगा?
2: अजी उसकी सीट्स फुल हो गई। मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, सप्लाई चेन में कोर्सेज हैं, ये 3-4 कोर्स हैं, फुली ऑनलाइन कोर्स हैं, 3 घंटे क्लास लगाएं, स्किल हासिल करें, सोखे जे ही है। अगर बताते रहो, क्लाइंट आते कहते हैं होम इंस्पेक्शन करना है, अजीब अजीब नाम लेते हैं, हमने कहा ये हमारा हैंड्स अप है, आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार है, अपनी और से काम करा लें, हम वही काम करेंगे जहां पता हमें हमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना।
1: ऑनलाइन क्लासा लाउनी है, घरों बैठे ला लो, कार चो ला लो, ट्रक चो ला लो, नजर मैटर नो, कोई केयर नहीं है जी।
2: अटेंडेंस मैंडेटरी है 75%।
1: बस तुसी बजट नंबर नोट करो, जेकर तुसी भी चाहुंदे हो कि तुसी भी ये कोर्स भी नाले कर लो, ऑनलाइन क्लासेस भी ने, ग्रांट जिहड़ी आ मेन वड्डी गल जिहड़ी अज दा इन्हां दा लाइव लोकेशन दा मकसद ये आ कि ये ग्रांट बंद हो जानी है, ये नहीं मिलनी है, फिर सिर्फ कल्ला लोन रह जाना। ये रूल चेंज हो रहे हैं, चेंज होने भी सुभाविक से, बहुत सारे लोग ने जिवें इन्होंने दस्सिया कि मिसयूज भी नागौर साहब बहुत सारे लोगों ने किया जी।
2: अब क्या कहना उनके बारे में ना, बट लालच कर जाते लोग, हमें लालच है नहीं, हम साफ तरीके से साफ काम कर रहे हैं 8 साल से।
1: अठ साल तो ये सर्विसेज ने हम तक सैकड़े नहीं हजार स्टूडेंट्स ने जो लाह ला चुके हैं, जिंदा चेर बंदा सिखता तो वो स्टूडेंट ही है। स्टूडेंट का मतलब यह नहीं कि 18 साल दो, 20 साल दो, 22 साल दो, इन्हों के पैंठ साल के भी जिन्होंने पेंशन भी मिल रही है, वह भी इन्होंने कोर्सेज लैके ना तो ऑनलाइन क्लासेज ला रहे हैं, ना ग्रांट जी उन्होंने मिल गया। कई ने तो मैं एक फैमिली में जानता नागौर साहब, वो जे कहते भैन जोड़े कि मेरे तो मैं पोते के लिए रखने से पैसे, ये याद है तुम
2: जी?
1: हाँ, सो ऐसा इदा दैमिलीज भी है ने, सो वो नाले तो क्लासेज ला रहे हैं, तो नाले उन्होंने ग्रांट भी मिल गई है, तो नाले लोन भी मिल जाना। नंबर तुम नोट कर लो, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175 से कॉल कर लियो। फिर भाजी सिर्फ 2 दिन रह गया, उस तो बाद कला लोन रह जाना, ग्रांट नहीं। ग्रांट का फायदा यही है कि एक तो तुम्हें एक्स्ट्रा मनी मिलनी है, प्लस तुम वापस भी नहीं करनी है, कोर्स का फिर भी तुम उही लेना, कोर्स का बाद च भी उही है, फीस भी उही है, फीस भी घट बद नहीं होनी है। सिर्फ तुहानू यह नुकसान हो जाना कि ग्रांट फिर तुहानू नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने पल्लों तो देनी नहीं है, ना कॉलेज ने देनी है, तो सरकार ने देनी है, जो उन्होंने रूल चेंज हो गए फिर वो नहीं मिलनी। 437-264-3175 इन्हों का नंबर है, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175। तुसी कुछ होर ऐड करना चाहते हो सर?
2: बस नहीं, ऑल गुड, आपने सब मेंशन कर दिया है, एंड साफ काम साफ तरीके से सही जगह से करवाएं जिनको एक्सपीरियंस है, और जो आप पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते थोड़े से लालच के चक्कर में। यूनी ग्लोबल एडवाइजरी, $3-2 लाख की फंडिंग, मेजर पोर्शन ग्रांट्स, काम होने के बाद 200-500 हमारी फीस, आपका फायदा हाथी जितना, हमारा फायदा चीटी जितना।
1: सो नंबर 437-264-3175 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚ, ਕੱਲਾ ਲੋਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਪੇਪਰ ਭਾਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ 100 ਪੇਪਰ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਉਹੀ ਨੇ। ਨਾਗਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ?
2: ਹਾਂਜੀ, फैमिली साइज पे डिपेंड है फंडिंग, तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट आपका, और सिंगल बंदों को फायदा नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ लोन बचता है, किड्स वाले या मैरिड ओल्ड एज कपल, रिटायर्ड यंग कपल को फायदा है। और आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट, और आपकी अगर 10th कर रखी तो 10th का कुछ मार्कशीट कहीं से भी करी हो, सो कॉल करें।
1: और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए,
2: आही
1: डॉक्यूमेंट जिहड़े चाहिए है। सो ये डॉक्यूमेंट तो आम अपने घर च पे ही होंगे जी, तुम इन्हों हूँ ही चाहे फोन करके इन्हों दसो, डॉक्यूमेंट भेजने तो पहले ही तुम दस देंगे कि तुम कि ग्रांट से किन्ने लोन के हकदार हो, वह तो बाद जी करे तो तुम करवा लियो, ना जी करे तो ना लियो। सो थोड़े से डिपेंड करता, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175। नागपाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू जी, बहुत बहुत
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो अज के प्रोग्राम के साथ दिता सारे ने, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। गल्लां बातां कल नूं कहानी खूबसूरत लैके तुहाडे रूबरू होवांगे। सो जेकर तुसीं लाइफ इंश्योरेंस जां फिर क्रिटिकल इंश्योरेंस जां सुपरविजर इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस दी भाल दे विच हो, तां वधिया सर्विसिज वधिया रेट लभ के तुहानूं लैके देणगे मुस्कान दिओल होणी। नंबर नोट करके रख लो, 647-564-2733, 647-564-2733 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਸਕਾਨ ਦਿਓਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, 647-564-2733, 647-564-2733। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਬੈਕ ਟੂ ਸਟੂਡੀਓ।

करले देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंक संग है 24 घंटे सतो दिन हूं तक देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश पर देश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551